केवेनष्टेयात न एङता सोवाने आय आय हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवाया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवाया शेक्या।

हम हो बेकसी क्या मई नव जम क्या मयो ने हम हो बेकसी क्या मई नव जम क्या मयो ने।